नेशन मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: उस दिन मैंने कसम खाई जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी।
1: मत पूछो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे।

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।